0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: ரெயின்போ ரேப் நிகழ்ச்சியோடு தான் நடந்திருக்கீங்க. அற்புதமான பாடல்களுடைய அணிவகுப்பு அடுத்தடுத்து நாம் கேட்கிருக்கோம். அந்த வகையில் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததான் நாம் கேட்கிருக்கக்கூடிய பாடல் தேவா பாலச்சந்தர் இருவரும் இணைந்து பாடிருக்கக்கூடிய பாடல் திரைப்படத்திற்காக. நிகழ்ச்சியினுடைய அடுத்த பாடலை கேட்கலாம், இணைந்திருங்கள்.

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, तो की जाए शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं, जिंदगी में कई लोग आते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलने के लिए, कुछ सिखाने के लिए और कुछ हमें बेहतर बनाने के लिए। इन लोगों के द्वारा जिंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर सुविचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू। अगला संदेश

मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, अरजान और अबान अब्बासी। और गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रंभा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद और कुमारी पुष्पांजलि निषाद के साथ साथ स्वप्निल कुमार निषाद। इदो ग्राम इंदु पोस्ट कारकल तालुका जिला उडुपी कर्नाटक राज्य से एच सिद्धार्थ जी ने लिखा है, उमंग के हर कार्यक्रम श्रोताओं के ज्ञान के विस्तार को बढ़ावा देने में बेहद सहायक हैं। अनजान नए नए विचारों पर रोशनी फैलती है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे ज्ञान से भरे कार्यक्रम अधिक से अधिक प्रसारित करें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। कच्छ भुज से जगदेश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी। आप सभी श्रोताओं का हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजा और आप सबसे हमारा निवेदन है, उमंग के साथ जुड़े रहिए उमंग से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए हमारा उमंग कार्यक्रम। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं हम ये भी जानिए श्रृंखला में आपके लिए लेकर आते हैं नई नई जानकारियां। तो इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ आविष्कारों की, खासकर ऐसे छोटे छोटे आविष्कारों की जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसी चीज की कहानी लेकर आए हैं जो इतनी छोटी है कि उंगलियों के बीच में आसानी से छिप जाए लेकिन उस छोटी सी चीज ने इंसान के लिए आग जलाना बेहद आसान बना दिया। श्रोताओं आप समझ गए होंगे ना, हम बात कर रहे हैं माचिस की। जी हाँ, माचिस। इसे हम लगभग रोज देखते हैं, डिब्बी खोली, तीली निकाली और घिसी, बस आग जल गई। सब कुछ कितना सामान्य लगता है ना, लेकिन श्रोताओं क्या कभी आपने सोचा है कि ये छोटी सी बारूदी तीली बनी कैसे? हमारा उत्तर होगा शायद नहीं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी इसी छोटी सी तीली की बड़ी यात्रा की। तो श्रोताओं पहला सवाल ये उठता है कि जब माचिस नहीं थी तो लोग आग कैसे जलाते थे? ये जानना तो सच में बहुत रुचिकर होगा ना। हजारों हजार वर्षों तक आग जलाना एक मेहनत का काम था। आदिकाल में लोग चकमक पत्थरों को टकराकर, लकड़ी रगड़कर या चिंगारी पैदा करके आग जलाने की कोशिश करते थे। ये जंगलों में यदि आग लग जाती थी तो उसी दावानल से लोग आग का लाभ प्राप्त करते थे। और हाँ, वे ये भी कोशिश करते थे कि आग को जलाए रखें। श्रोताओं मुझे तो आज भी याद है कि पहले गांव के कुछ घरों में लोग घूरे पर या आंगन में आग जलाए रखते थे और पूरा गांव उनके पास आग मांगने के लिए आता था, है ना? याद है आपको? ये आपसी मेलजोल और सहयोग की भावना का एक अनूठा उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन जरा सोचिए, अगर बारिश का मौसम हो, लकड़ियां गीली हों और तुरंत आग चाहिए तब कितनी परेशानी होती होगी। और तब इंसान जरूर सोचता होगा कि काश कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे आग जल जाए। और यही इच्छा धीरे धीरे अलग अलग प्रयोगों का कारण बनी। तो आइए जानते हैं पहली माचिस कब और कैसे बनी। श्रोताओं एक खास बात आपको बता दें कि आज की तरह आसानी से असुरक्षित जलने वाली माचिस अचानक किसी एक ही दिन में नहीं बनी। कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के प्रयोग के बाद इसका विकास हुआ। तो आइए चलते हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। यूरोप में एक ऐसी रासायनिक माचिस बनाने के प्रयोग होने लगे जिन्हें किसी सतह पर रगड़ने से आग पैदा हो सकती थी। शुरुआती रासायनिक माचिस आज की माचिस जितनी सुरक्षित नहीं थी क्योंकि उनमें कुछ ऐसे रसायन इस्तेमाल होते थे जो हवा या ताप के प्रभाव में आकर तुरंत आग पकड़ लेते थे। इसकी वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ऐसी माचिस बनाने पर काम शुरू किया जो उपयोग में आसान होने के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित भी हो। और फिर आती है हमारी आज की माचिस। श्रोताओ 19वीं शताब्दी में फॉस्फोरस से जुड़ी तकनीकों और घर्षण से जलने वाली माचिस के विकास ने इस दिशा में बड़ा बदलाव किया। वैज्ञानिकों ने ऐसी लकड़ी से तीली बनाई जो खुद भी आसानी से आग पकड़ लेती थी और फिर तीली के सिरे पर ऐसे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया जो घर्षण और गर्मी से आग पैदा करने में मदद करते थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन श्रोताओं अब प्रश्न है कि डिब्बी के किनारे वाली खुरदरी पट्टी का विकास कैसे हुआ जिस पर घिसकर हम माचिस जलाते हैं? तो आपको बता दें कि आधुनिक माचिस में तीली और डिब्बी के घर्षण वाली सतह पर अलग अलग रासायनिक पदार्थ रखे जाते हैं। तीली को उस सतह पर रगड़ने पर घर्षण से गर्मी पैदा होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण लौ जल उठती है। हम समझते हैं कि हम सिर्फ तीली घिस रहे हैं लेकिन श्रोताओं उसके पीछे रसायन विज्ञान की पूरी कहानी चल रही होती है।
आइए श्रोताओं

जानते हैं अब एक बड़ी रोचक बात कि इसका नाम माचिस क्यों पड़ा या इसका नाम माचिस कैसे पड़ा। भारत में इसे आमतौर पर माचिस कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे मैच बॉक्स कहते हैं। मैच शब्द एक फ्रांसीसी भाषा के मैश्चे शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है दिए या मोमबत्ती की बाती, जिसे आग पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई, तो आग सुलगाने वाली उस तीली को भी मैच कहा जाने लगा। तो मैच यानी तीली, और इसे डिब्बी या बॉक्स में रखे जाने के कारण ये मैच बॉक्स हो गया। और धीरे धीरे यही शब्द हिंदी में माचिस बन गया, है ना। खाना बनाने से लेकर मोमबत्ती जलाने तक लंबे समय तक माचिस ने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे अब तो हमारे पास लाइटर्स भी हैं, लेकिन माचिस की भूमिका अभी भी कम नहीं हुई है। जी हाँ श्रोताओ, तो अगली बार जब आप माचिस की एक तीली देखें तो याद रखिएगा, उस छोटी सी लकड़ी के पीछे सदियों की आग, मेहनत, प्रयोग और विज्ञान की कहानी छिपी है। और हाँ, बच्चों के लिए एक खास बात, खासतौर से हम अपने श्रोता विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि माचिस से प्रयोग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थोड़ी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। विज्ञान को समझिए, उससे सीखिए और हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको भी पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस ब्रिटिश रसायन शास्त्री ने पहली बार घर्षण से जलने वाली पहली आधुनिक तीली बनाई। आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, वेबसाइट के अनुदेशों का पालन कीजिए और विकल्प पर जाकर मनचाही पुस्तक डाउनलोड कीजिए। इन्हीं पुस्तकों का ध्वनि रूप भी आपको NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो निवेदन करते हैं, इस चैनल को यानी NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। इसका शीर्षक है भारत प्यारा। कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्यपुस्तक की एक नज्म पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा भारत भूमि के गौरव का गान किया गया है तथा बताया गया है कि हमारा देश भाषाई, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कितना अद्भुत और सुंदर है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
2: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
3: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
2: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
3: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
2: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का

0: शिक्षण चल रहा था।
1: जवानों,
2: जी सर,
1: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
2: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
1: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
3: जी सर।
1: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
3: जी जनाब।
1: हथगोला हाथ में लो।
3: ले लिया जनाब।
1: अब पिन रिलीज करो।
4: फेंको।
3: फेंका जनाब।
4: अरे अरे, ये क्या हुआ?
5: ये क्या हुआ?
4: अरे
5: बचो, फटने
4: जा रहा है।
5: सभी साथ पीछे हटो।
4: जमीन पर लेट जाओ। बाहर निकल जाओ।

0: चल पर ही आ गिरा
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
2: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
4: सही में
2: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
5: May I come in, sir?
3: Yes, come in.
5: Sir.
3: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
5: सर।
3: Well done, Adi. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
5: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
3: हाँ हाँ, कहो।
5: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
3: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
3: गो अहेड यंग मैन।
5: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
6: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
7: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
6: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
8: जी जनाब।
3: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
5: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
7: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
5: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल,
6: और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस

0: तीसरे टैंक पर।
1: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर।
1: सर, ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगा उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर।
1: सर, ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
1: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது NCERT வழங்கும் விளம்பரதார நிகழ்ச்சி.